0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रूहानियत नैनो से पार्थक्य होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनो से खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी जलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे, रूहानी बनने में भी शक्ति बढ़ने वाली है। और दूसरों को भी शक्ति देती है। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प, मनसा सेवा के निमित्त बनते। रूहानी बोल

स्वार्थाने आत्मा बन जात। रुआने करम सेज स्वयं को भी करम योगी स्थिति का अनुभव कराते और दूसरों को भी करम योगी बनाने सैंपल बन जाते। जो भी उनके सब

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन वायुमंडल में आओ नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। एक दो के साथ ही है ना, तो साथ देना अर्थात आगे बढ़ा। से प्यार है तो बाप को किसे प्यार है। दीवर पुरुषार्थी बच्चा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah.

0: sleepy. पांच मिनट के लिए तो खुश हो गए, दुखी आत्माएं। अगर आपको देख करके पांच मिनट भी खुश हो जाए तो उनों के लिए तो बहुत दिल पसंद बात।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Not सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

तो अनुभवी स्वरूप का अर्थी है, ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होना चाहिए। Okay.

सीट पर सेट है तो श्रेष्ठ कर्म सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देंगे। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना योग युक्त राज आवश्यकता का अटे

0: सोचना अलग है, मनन करना अलग है, स्वरूप अनुभवी स्वरूप बनकर चलना। अभी इसकी आवश्यकता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: साधन नहीं है और ख्वाब को तो वैराग है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग, पहले साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर? साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन यूज करो, बड़े दिल से करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते कमल पुष्प समान। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपका कर्म का योग का फल है। लेकिन व्यक्ति की बात, ऐसे तो नहीं कि साधन की प्रवृत्ति में साधनों के वश फस्त नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, शूस करते हुए उनकी परवाह में नहीं है। न्यारे साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी आवश्यकता है विश्व में अति में जा रहे हैं, तो अभी सच्ची वैराग व्यक्ति चाहिए और वो वायुमंडल बनाने वाले आप पहले स्वयं में फिर विश्व।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबे बहुत बहुत बहुत खुश है, खुश है, बहुत खुश है। कितना बहुत ऐसे रहना, कुछ भी हो जाए होने दो, हमें खुश रहना है, हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। खुश रहो, सबको खुशी दो, कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं कमाओ, बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना। तो जो साथ में चलने वाली है, छोड़ने वाले को पास में रख देते हो और साथ में चलने वाले को छोड़ देते हो, ये नहीं कर। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वर्तमान समय बाप दादा धोपा धोपर बार बार अटेंशन दिला रहे। एक स्टॉप बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ, दूसरा स्टॉक जमा कर, दोनों जरूरी है। तीन खजाने विशेष जमा करो, एक अपने पुरुषार्थ संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी। उसके फल स्वरूप दुआएं जमा करो, दुआएं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज हो करके हिम्मतहीन हो करके जमा हुए खजाने में भी
4: check।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Isso.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

rico.

Red Sun.

बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे, समझ जाएगा

के बर्बाद बहुत टेंशन में रहते हैं। आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ा, तो आपका टेंशन खुश

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सकते हो, सकाश दे सकते।

और वो अनुभव

0: इस साइलेंस के सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टेंस अनुसार
1: इसलिए

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कुछ

0: पुरुषार्थ कर रही है। जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमण, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमण, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संबंध Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी, क्यों के ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता फकर रहता है, नशा रहता है।

0: स्पृशती जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा अभी जो बाप दादा ने कहा वो हर एक एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो, बहाने बाजी आलस अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत संकल्प स्वरूप में सभी बैठो।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के दिन सभी के दिल में आगे आने वाले वर्ष के लिए Bye.

Barış geliyor.

Ya está.

Mom.

0: खरीकने अपने मन में अपने वृद्ध नया प्लान बनाया है ना, कुछ छोटा है और कुछ आगे बढ़ना है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: लक्षण विशेष

Nasz dom.

amor para Tomé. Nos tomó una. Coimos que

of me.

John Boutique.

वचन।

संपर्क में इसी स्वभाव में इसी सेवा में इसी संतुष्ट करने में इसी संतुष्ट रहने में इसी

Et c'est les mamans.

0: शरद का समय बहुत थोड़ा है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिक्का सिर्फ सिक्का नहीं तो अगर सिक्का देती भी है, देने पड़ते भी है, लेकिन किमिया और सिक्का, किमिया रूप बन के सिक्का दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, आपका मर्सीफुल रूप अवश्य सिक्का का फल दिखाएंगे। देखो आजकल साइंस वाले भी पहले ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर सिक्का दो, तो प्रभाव डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप सिक्का देने लगते हो, वो पहले ही आपसे ज्यादा शिक्षक है, तो शिक्षक शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे ऐसे नहीं करो ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट्स होंगे। इसलिए किमिया और सिक्का साथ साथ हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा को ये जो परिवार की बात है, उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती, देखनी पड़ती। एकदम बड़ी दिल लो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार एक है। एक मत हो के चलना है, चलाना है, सिर्फ चलना नहीं चलाना भी। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रही है कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता। चलाना है जैसे बाप दादा ने, अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने चलते हो, चलो ज्यादा में ज्यादा 25-50, इतने होते नहीं है। लेकिन मानो बड़े स्थान है, उसमें भी 50-60, अच्छा 100 भी समझो, ज्यादा में ज्यादा इतने नहीं है। लेकिन समझ लो तो बाप दादा तो सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया था। और प्यार की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार क्या देता, मीठे मीठे जानता है खट्टे भी है। लेकिन मीठे खट्टे कभी याद में कहा है, उन्हों को भी लाडले कहते हैं। नसरब कहते हैं, लेकिन मेरा बच्चा मेरे भाव से चलाते हैं, क्योंकि बता दिया कि ड्रामा में माला में सब एक नंबर नहीं है। ये रिजल्ट है, संस्कार बिना बिना होते हैं, होना है, नहीं तो सब राजा बन जाए, प्रजा कौन बनेगा, राज किस पर करेंगे। अच्छी प्रजा भी तो चाहिए ना, रॉयल प्रजा, राजधानी है ना। ऐसे हर एक अपने को चेक करे, परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या। अगर खराब को देख, मेरा संस्कार भी खराब हो गया, तो मैं तो खराब का हो गया जो अच्छे को भी बदल देता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: से लाल पीला नहीं।

0: इसलिए तीसरा रूप भी है, वो चतुराई का रूप है, क्रोध के चतुराई का रूप है। वो क्या है? कहने में, समझने में, ऐसे समझती है वह कहती है कि कहां कहां सीरियस होना ही पड़ता है, कहां कहां ला उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वो अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में ला उठाने की छुट्टी है दी है। कोई मुरली में कहा है क्या, लाभ ले उठाओ, क्रोध नहीं करो। लाभ उठाने वाले अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है।
1: शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा वैज्ञानिक, बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस महीना होती जाती है, साइंस अति सूक्ष्म महीन होती जाती, ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो, तो अपने हम जिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

लगा

0: أسرف في جيبنا.
1: Yeah.

0: drop the curtain.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: It's okay.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियां फील करेंगे थोड़ा। फॉलो फादर, ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं बोलो। वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। सहनशीलता के देव व देवियां होना हो। सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। सोचते हो नहीं लेना।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वापस क्यों देते? चोरित ये बाप दादा कहते हैं वापस लो श्रीमत है ये नहीं है ना फिर क्यों रखते वो तो वापस आएंगे क्यों को उसका आपसे प्यार है लेकिन आपका प्यार नहीं उसको आप अच्छे लगते हो और आपको वो अच्छा नहीं लगता तो क्या करना पड़े तो अभी आज कम से कम जब फरश 5,000 फरश के लिए विदाई लेता है तो आप कम से कम ये छोटा सा ब्राह्मण जन्म एक ही जन्म है ज्यादा नहीं है एक ही और उसमें भी कल का भरोसा नहीं तो वो 5,000 की विदाई देती है तो आप कम से कम एक जन्म के लिए तो विदाई दो दे सकते हो हाँ जी तो करते हो लेकिन जिस समय वो वापस आती है ना तो सोचते हैं यह बड़ा मुश्किल छूटते ही नहीं है ना क्या करें छोड़ो तो छूटे वो नहीं छूटेगा आप छोड़ो तो छूटेगा जो आपने उनसे प्यार बहुत कर दिया तो वो नहीं छोड़ेगा आपको छोड़ना पड़ेगा तो बराने वर्ष

0: 死你。你谢过了你，阿拉辈子不不能。谢完是个。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता, छोटे छोटे बीच में

doch

Ask.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सेकंड में पहुंचा सकते हैं। आपका शुभ श्रेष्ठ संकल्प उसके आगे ये रॉकेट के रिफाइन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है अपने मन की वृत्ति भावना शुभकामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सम्मान देना, अर्थात दूसरे के दिल में दिल के

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेंटर तो सब सेफ है,
2: सब ठीक है, ब्राह्मण परिवार भी ठीक है।
1: फिर भी बॉम्बे बाप का बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इसको जरूर बनाना। ये तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे?
2: गुलाबा सेंटर में तो बाहर नहीं निकलते हैं अभी, वहाँ हमारी बहनें भी जो है वो बाहर नहीं निकलती।
1: इससे बहुत कुछ होना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चारों ओर सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवादारियों को मुबारक भी देती है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रही है और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा खूब करो बाप दादा। सेवा के लिए मना नहीं करते और शोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल रहा थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्रह्मांड परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। ये दुआएं का खाता बहुत जमा करो, अपील की दुआओं का खाता आपके आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है, इसलिए क्या करेंगे स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। ये नहीं सोचो ब्रह्मांड आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा, बैलेंस कम कभी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती, अनुभव स्वरूप बनने का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार Yeah.

सेवा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: शरद में थकना नहीं, कोई भी छोटी मोटी बाधा आती है मदद लो। उसका कोई ना कोई सहयोग ढूंढो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कहीं बच्चे

0: बहुत बच्चा डबल राजाधिकारी है, कांधे लाओ। तो बाप को कितनी खुशी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा है कि जो भी विंग्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे धार्मिक है, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन में रखते रहे, वो नहीं होता है। जब फिर प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, फिर से आओ, लेकिन समय पर तो समय बाप दादा ने एक फॉरेन का समाचार सुना है कि एक लाइफ टाइम्स का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें लगातार हर सप्ताह जो भी आते हैं और अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है, लेकिन पक्के रिलेशन में लाने के लिए उनकी पीठ नहीं करते। 6 साल के बाद वो याद आ गया तो आ गया, कनेक्शन हो गया तो हो गया, लेकिन हर एक की एड्रेस पर उनको कुछ न कुछ सप्ताह में बेचना चाहिए, जिससे उनकी पालना होती रहे। बिना पालना के फिर कभी नहीं भरा होता। सिर्फ प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रेस भी उनकी करानी चाहिए। नस्तिक आते जाए, इस वर्ष में कितने नजदीक रिलेशन में आए, समझा सुना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज से देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, पीछे वाले हाथ हिलाओ। But

विश्व की बड़ी

Oh, shit.

ciao.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको

0: से देखो, हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छे पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो, एकता लास्ट नंबर पे। एक पापा का बच्चा, पापा को सामने लाओ, उसकी गलती को सामने नहीं। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख गया है, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन कितना से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संघ दोष में बहुत आते, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए। लेकिन संघ का रंग, बाप के संघ का रंग कम लगा है, इसीलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संघ दोष पे नहीं है। आज होली है ना, तो जो संघ दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संघ दोष पे नहीं है। हद तक के प्राप्तियों के आकर्षण होली का दिन है। ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगा दिया ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते, तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को पाप के रंग में रंग। अच्छा आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिए तरस पड़ते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जैसे ब्रह्मा बाप ने रोज

संकल्प को समाप्त करो तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि इस व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो, पूरे संकल्प

sip.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए कि बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी। अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो चलो तो स्वमान कहती जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है। वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी, उसको यूज करो क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो इस स्वमान को आपके कम कर सके और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली। तो बाप दादा ने देखा सत्ययुग में तो राजभाग मिलेगा लेकिन स्वमानों की माला संगम युग की देन। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चों के स्वमान के स्थिति से देखते हैं। वाह बच्चा वाह, तो स्वमान के मैं कौन, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा उस स्वमान खजाना है ना, इसको यूज किया क्योंकि खजाना भरने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन चाहे किसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहां स्वमान होगा वहां देवान खत्म हो जाता। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वमान का खजाना है ऐसे एक एक शक्ति एक एक गुण इस्तेमाल करो, उसको कार्य में लगाओ। तो ये जो प्रॉब्लम होती है माया आ गई, माया आ नहीं जाती लेकिन माया ने बाप को सुना कि मेरे को आवाज कर दे तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। कोई भी हल्का संकल्प करते हैं माना माया को आवाज किया, शक्तियों को छोड़ता है तब तो माया को आह्वान किया, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। तो बलवान कौन, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती। तो माया बलवान हुई या आप, तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है। एक एक दिन दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मालिक सदा मालिक होता है।
4: कितने वर्षों से जुड़ा
3: हूँ? अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको, तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेते रहो, बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिसे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे।
4: मेरे ऊपर निर्भर उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा, जो मेरे ऊपर निर्भर है
3: वो भी ठीक, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति बढ़ेगी, दोनों को भी शक्ति बढ़ेगी, हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कह के और शक्ति ले।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वर्तमान समय

సంకల్ప విక్లప్ నై వ్యరత్ సంకల్ప దూసరా భీ సునాయేగా దూసరా

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हर एक वर्गीकरण से ऐसी कोई

0: टेस्ट को खत्म कर, पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैला, फेस्ट
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी चेक करना अपने राज के संस्कार, अभी से धारण करने ही है के नहीं करना, एक के दूसरा करते हैं ना, लेकिन बदलेंगे। हाथ उठाया पक्का कि कहेंगे मैंने बहुत कोशिश की नहीं हुआ, ये जवाब नहीं देना, क्योंकि अभी अचानक के खेल बहुत होने हैं। और बाप दादा के चाहता है एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चले, इसलिए एक दो अगर कोई नहीं बदलता है शुभ भावना रखी, और कोई नहीं बदलता है तो आप अपने को बदलो। उसने ये कहा, उसने ये किया, इसीलिए मुझे भी करना पड़ा, ये नहीं। करते सिखाने के भाव से हो, लेकिन देखते कमी को। इसीलिए भाव और भावना, आत्मक भाव, शुभ भावना, और ये शब्द ये तो होता ही रहता है, ये तो करते ही है ना, चल ही रहा है ना, तो मैंने किया तो क्या हुआ।
2: करनी है ना, अच्छा, और माताएं
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे सोचते हैं

Si bajaste de ti, a probar.

0: Jesse Sakar, rob me. सदा बच्चों के साथ रहे ऐसे वतन में भी रहते बच्चों के साथ ही रहते अकेले नहीं रहते बच्चों के बिना को भी मजा नहीं आता जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सोचता अकेले नहीं रहते साथ में रहते साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना एक एक कॉपी के साथ उन्होंने कृष्ण को दिखा दिया लेकिन ये इस समय का गायन है अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे चाहे रात को 2 बजे या 2:30 बजे किसी भी टाइम साथ निभाते रहते साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते बाप को काम ही क्या बच्चों को समान बना के साथ ले जाना यही तो काम है ना और क्या तो इसी में ही बिजी रहते
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहाँ है खुशियों का संगम

corsé.

Assalamualaikum.

Sick.

Thank you.

Awesome.

सवेरे दौड़ते से

Escute abdômen.

सब

Hip hip.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

exercise, girl.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: फॉलो करना तो सहज है ना, जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता और अनुभव है सब। उस सामान स्थिति बनाने का साधन यही सहज है और ये अभ्यास
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

some

सबमें सिर्फ तीन शब्द याद रखो और समानता करो। ये तो सही।

0: संपर्क में।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्मा बाप को देगा कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ये आशय है दृष्टि लेना पवन से समर्पित वालों की, ये आशय है।
4: लेकिन दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में बाप दादा को सदा रखना है, ऐसे ही दृष्टि नहीं लेनी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Never.

Sick.

Yeah.

0: इतना सहज विधि सुनाई है, सिर्फ है संगम युग में बिंदी की कमाल, बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय ना सिखाएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चेहरा बढ़ेगी, कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। सेवा तो करते ही है, और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार्ट तो आप भी देखते, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने अकाटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपके हिम्मत पर तो खुश है, अब और साथी बनाओ और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठा से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शोर इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा, चाहे सोन नाम अलग अलग है लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चार चांद लगाओ, ये बाप दादा को अचल। तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, बढ़ाएंगे ना, सभी ने उठाया, हम सब एक है। ये तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके इसके कारण सोन बने, बाकी एक ही है, एक ही रहे।

0: hija, báname, sacalabcarteo, yécarte, yécarte, yécarte, yépicatamcar, oncoseyoto, sresh. Esi seva karte sare sangathan ko shreshth sankalp wale banana hai koi se dabar kabhi bhi koi एक तो के प्रेत कोई भी और भावना नहीं शुभ भावना शुभ कामना ठीक है ना बहुत अच्छा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते, कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा अभी क्या चाहते? हर बच्चा क्यों कर बाप दादा कुछ

Awesome.

कारण पुरुषार्थ में रहे। एक घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सुखति वो एक घंटा का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान।

0: इसमें का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, रहेगा नहीं पड़ेगा। क्यों किसी को भी आप उसकी आशय पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, वो कितनी दुआएं देंगे। और दुआएं लेना सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। कर सकते हो तो करो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं। सफल करो खजानों को। सुनाया ना, मन सास से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना और बुद्धि से समय का खजाना, मन संपर्क से खुशी का कसन। सफल करो तो सफल करने से सफलता मूर्त बनी जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं सीढ़ी का नहीं। समस्या आई मिटाया, कभी दो दिन लगाया, कभी दो घंटा लगाया, ये सीढ़ी चढ़ना है। दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे जहाँ जाओ। चाहे सुखी वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज में पहुंचो, सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट का, बाप दादा तो कहते 1 सेकंड। 1 सेकंड में लिफ्ट में चढ़ जाओ, सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: भक्त दस्य

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Tranquilo.

Hilken Bob. फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल पर माया से

你我是个。

0: उसे खोल देते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को सबसे समीप रतन वही लगता है जो सफाई और सच्चाई में दिल साफ और सच्ची दिल वो बच्चे चाहे कितना भी दूर हो लेकिन सबसे समीप बाप दादा के दिल पर रहते। इसलिए इस विशेषता को सदा ही
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी प्यार की पालना से आगे बढ़ रही है या कोई बीच में

psiquiatrarse. Así. Yeah.

बच्चों का लक्ष्य और लक्षण देख खुशी।

0: दूसरी बातों को नहीं देख, आगे बढ़ना ही है। बोलो, सबको ये लक्ष्य है, आगे बढ़ना ही।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: लेके आए
2: ये
1: रखो, तुलसी के पौधे।
2: अच्छा अच्छा, रखो
1: तुलसी के पौधे। ये वैरायटी तुलसी है ना, उसके पौधे
3: अश्वगंधा।
2: अच्छा,
1: खांसी के लिए है।
4: अच्छा, दादी गए थे बगीचे में, दादी तीन दिन रहे उसी कारण से, और इसी टाइम में दादी ने इन लोगों को दृष्टि ज्ञान दिया था। अभी
1: गुलजार दादी गई थी इनो की उसमें, तो ये दोनों उस टाइम निकले हैं, ये दोनों युगल और प्रसाद रेड्डी।
2: ये तो कल पहले इनो का भाग्य रहा हुआ था, कल पहले वाला भाग्य आपने अपना ले ली। अच्छे अभी अहमदाबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दादा दृष्टांत देवे कि वीआईपी सर्विस अगर देखना हो हैदराबाद में दे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना, ये आंखें बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है या करता है। बाप इतना भी फोर्स दे के कहते हैं, अगर कोई फिल्ला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा ने आज थोड़ा सबक सुना रही है, बुरा तो नहीं लगता है, बुरा लगता है नहीं। अच्छा तो एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय सदा ने कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करते हैं, वर्णन भी करते हैं एक दो से क्या है। सबको देख लिए महारथी भी करते हैं, हम तो है पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना, हम बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्स दिला के भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे, इसलिए मन को ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, रिस्क करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा देंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। मन को सुनने के बजाय अंतर्मुखी रखो। समझा?
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

瞬间。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

alone.

Chick.

讲。

0: समय सूचना दे रहा है।
1: पुरुष

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों समय पर गुस्सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा, इसलिए सर्वखजाने को से चल

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रियलिटी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितने चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती। उस चमक की रियलिटी पर्सनल
2: बने हो, देवताएं बने हो। अच्छा, सोना
1: के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बोता बना के रख देंगे। क्या भी होता रहे, और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया कुमारियां बैठी है ना। रॉयल्टी है ना आपकी, फिर अंत में संगम युग में भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेंगे ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वो अपना काम तो करेंगे ना, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना, परिस्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति को प्रभाव नहीं डाल, और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से चुराने के निमित्त बनो। योग मन की परेशानी आप मेडिटेशन से मिटा सकते। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन की परेशानी टेंशन जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन के परेशानी के आग बुझाने वाले। देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है, गुजरात में आओ, अबो में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को मन के लाइन को होना सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पाँव वहीं चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन असलम घर आपका है। डरना नहीं, कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल परिवर्तन होना है, ना विनाश नहीं, परिवर्तन होना। सब में वैराग वृत्ति उत्पन्न होनी है, रहम दिल पर सब पर शक्तियों द्वारा सकाश दे, रहम करो, समझा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य

Chola.

Loco.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दुनिया वाली कहती है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड और वो भी
2: याद है अपना

आत्माओं को प्राप्त नहीं होता, चाहे धर्म आत्मा ही है, महात्मा ही है, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्य काल में, तो मध्य काल में भी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी पाप दादा भी देखेंगे, एक मास के रिजल्ट में सिर्फ यहाँ ये लिखे कि इतने परसेंट सेवा की, 40%, 80%, 10%, 20%, सारा परसेंटेज लिखे, बड़ा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखे। फिर बाप दादा इनाम देंगे फर्स्ट नंबर वाले को, लेकिन बैलेंस, स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस, ठीक है, सब रिजल्ट लिखेंगे। सारा परसेंटेज लिखना बेटी दादी, योग युक्त दादी, लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज, क्यों टाइम नहीं होता है पढ़ने।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले जाना अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा भी कहते हैं अभी भी, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान रिश्ते रूप में प्रतिज्ञा करना ही है। तैयार हो ना, तैयार हो। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी कर इतना तो है ही, नहीं तो नहीं तो कैसे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बात नहीं आती।

0: कैसे भगा रही है, ये खेल भी देती रहती। कोई तो घबरा कर भी दिल शिकस्त भी हो जाते, फिर बाप दादा को यही शब संकल्प पाता है कि इनको संजीवनी बूटी कोई द्वारा खिला के सुरजीत करी। लेकिन वो मूर्छा में इतने मस्त होती है जो संजीवनी बूटी को देखती नहीं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गमाना, थोड़ा रख, थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, अभी समय के समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े सोट में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी जैसे मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये पक्का हो गया, पक्का है ना? चलते फिरते क्या सोचते हैं हम ब्रह्मा कुमारी है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा आत्मा है। ऐसे अभी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: नजदीक भी नहीं आ सकते।

साथ में। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Sorry.

0: कम से कम मुस्काना जाए आपकी दृष्टि से, हिम्मत आ जाए तो ये अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई न कोई अनुभूति कराए, सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति करो। अनुभूति अमर होती है, वाणी सिर्फ वाणी। थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा नहीं याद रहते, इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन, अनुभव कराओ। जो भी समान संपर्क में आ रही है
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय परमान सब अचानक होना है, पता के नहीं होना है। जैसे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहते, एक शब्द है सफल करो सफल बनो, जो भी खजाने
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी समय पर मान सबको बेहद के वैराग वृद्धि में जाना ही होगा। समझती है कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना ये समय शिक्षक बनाना। माँ बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद की वैराग आद से अंत तक रहा। भोलेनाथ का भंडार, से मेरा समझ कर पर्सनल अपने वृद्ध एक रुपए की चीज यूज की कि कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी फिल किया कन्याओं माताओं को मेरा पन नहीं सदै बच्चे अन्य बच्चे सेवा और सभी बातों से उपराम
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Eso.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा परिवार का विशेष कार्य है धुआं देना, धुआं लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करते हैं, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं अच्छा संस्कार वश वो बद दुआ देते हैं, आप दुआ देने चाहते हो लेकिन वो बद दुआ देता है। लेकिन बद दुआ दी लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वो है, वो देने वाला है, आप लेने वाले। तो उसकी बद दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद दुआ लो नहीं, लेने वाले आप न दो न लो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सकता है। अच्छा फिर बहाना नहीं बताना, ये था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत खेल देख चुके हैं, मीठे मीठे खेल, कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा, सौ गुना समस्या का स्वरूप जाए, और

0: हर कलम आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कलम पहले वाले हैं। इस कलम के हो कि अनेक कलम के हो, अनेक कलम के हो ना, निश्चित है ना। आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना, मिल गया है ना, कि लेना है, मिल गया है ना, मिल गया है कि लेना है। नहीं, कल अब पहले मिल गया है, अभी क्या नहीं
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहती है कि आजकल सच्ची लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहां कहां तो झूठ नहीं कहते उसको, लेकिन कहते हैं, समझती है कि चतुराई से चलना पड़ता है। तो चतुराई क्या है ये तो करना ही पड़ता है। तो वो स्पष्ट बोलती है और ब्राह्मण रायल भाषा में कहती है, मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप Thank you. सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है, लेकिन बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होते। ऐसे समझेंगे हम बहुत अच्छे जाते, हम कुछ चलने की चतुराई आ गई, इससे नहीं चलो। एक तो को देख करके भी कभी करते हैं, ये ऐसे चलती है ना, तो उसका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत हावी हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे रह गए, रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। पाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे, चाहे पीछे दिखाई भी के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाले लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने के लिस्ट में आते हो, लेकिन समय तक सारी के लिए काफी नहीं करूं। यहां नाम नहीं है लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे ना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही चाहते हैं, आप थोड़े समय में के लिए पुरुषार्थ के प्रारंभ स्वरूप बन जाओ। बन सकती है कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, बनेंगे प्रारंभ वाले बनेंगे। हाथ उठाओ, हाथ घुमाओ, अभी

لكن

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो, वो कौन सा? पाप करा वन हार है और मैं आत्मा, मैं फलानी
2: it।

0: और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं है। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, पता है क्या देखा? कभी किस बात की है,

दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाती, तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन कमा आश्चर्य आश्चर्य की निशानी, और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना, अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी is

0: stop. Seeker me. Lagane ka. Bar bar. Abhyas karo. Abhi. Fast divar pusharat karo. Abhi dhila dhala pusharat. सफलता नहीं दिला सके।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Percentage yoga keys.

0: que sommeil ô combien attire. Lesquels yogi Arthad yogi ka jivan me
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बिजनेस वाले हाथ उठाओ, ये सब बिजनेस। तो बिजनेस वाले क्या सोचते हैं? खास आपको चांस मिला है, बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। श्रम खुद किया वो तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेस मैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है क्या होगा, तो उन्हों को चिंता से हटाए अपना शीख खजाने का मैं तो सुनाऊ। जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपन ने हम जिंस कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है क्या होगा, कैसे होगा, है चिंता? हाँ, नहीं है तो हाथ उठाओ। अच्छा, नहीं है चिंता, कल कुछ हो जाए तो चिंता नहीं है, है? नहीं है ना चिंता, नहीं, बेफिक्र बात है। बिजनेस मैन बेफिक्र बादशाह है। दोनों ने हाथ उठाया। अच्छा, नहीं, अभी आप नीचे करो। जिसको थोड़ा थोड़ा फिक्र है वो हाथ उठा सकते हो, शर्म आएगा। Oh. ऐसी बेफिक्र हो, बेफिक्र होके टूटने वाला भी बच जाएगा, और फिक्र में होगे निर्णय ठीक नहीं होगा तो एक दिन में क्या से क्या बन जाते, ये तो जानते ही हो। बेफिक्र होगे निर्णय अच्छा होगा और बच जाए, टचिंग होगी। अभी समय अनुसार ये करे या नहीं करे, इसीलिए फिक्र मारना, बिजनेस भी करना और अपनी स्थिति भी करना। सदैव ये याद रखो, बेफिक्र बात जाए, फिक्र की बात भी बदल जाएगी। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं, हिम्मत से बाप की मदद मिलती रही। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं, हिम्मत ही के मददगार नहीं। आप सोचेंगे बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले ये सोचो हिम्मत है। हिम्मत बच्चे की मदद बाप की, आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी, दिल शिकस्त न होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो, बिजनेसमैन सभी बोलो कौन हो, कौन हो, बेफिक्र बच जाओ। हाँ बोलो, हाँ बेफिक्र बच, ये याद रखना।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एकाग्र कर सकते

Classic Summit. Nastic Otter. Islie. Is

So amazing.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: हॉस्टल में कईयों को संदेश मिल जाता था। पहले पहले सर्विस जब आरंभ हुई है तो बहुत मेहनत से शुरू।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: और आप सोचो, ब्रह्मांड आत्माओं की निजी संस्कार कौन से है? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति ये है ना, तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ, मेरा निजी संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को अपना बनाओ, रावण की चीज को संभाल के रखा है और पाप की चीज को गुम कर देते हो क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है, ये पाप अच्छा लगता है, कहेंगे तो सभी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय के स्याही से दिल में समा जाती, जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं,

0: ये तो अच्छा नहीं है। सब बाप चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना। सच नहीं बन के चल
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सत्युग में या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी

रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक खाना पी करो इसकी अपने

Listen.

Nímbolo. Mira todo así.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि
2: see।

前哎。

सबसे महान

明天。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप को भी समझाने लगती है, कहती है बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अभी तो हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में इतना मोटा तसा शरीर है और शरीर से ही सब करना है चलना है, तो हम ऐसा सोचो, पाप की आंखें उल्टी करेंगे, नहीं करेंगे तो कहां करें। कोई स्थान तो बताओ ना।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: See

इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं। एक सेकंड का अभ्यास

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी दिल से विश्व सेवा प्रेत झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत बहुत बहुत पदम पदम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप को देगा कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी
0: रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया, बेहद का फेरा, आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बहुत बेचारे दुखी है, बहुत परेशान। तो अभी रैम दिल बनो, रैम की लहर, बेहद दुखी फैराग, फिरती द्वारा फैलो। अभी सभी साथ ऊंचे थे ऊंचे परम धाम में बैठ, बाप के साथ ये सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि तो वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते हैं ना। तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहां से ये बेहद की रैम का वायुमंडल

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मधुबन निवासी अर्थात करम में मधुरता और वृत्ति में बेहद काफेरा मधुबन निवासी स्पेशल अटेंशन रखना है कि हमें चारों और याद की पावरफुल याद की वाइब्रेशन फैलाने कम से कम चार घंटे से होना तो ज्यादा चाहिए, लेकिन कम से कम चार घंटे ऐसे समझो हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले भी सुना है, संस्कार है।

0: और संस्कार बनते कैसे हैं वो तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती, और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद। परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपकी समय की कंठिया, प्यार की कंठिया आप

भगवान उचित उचे बच्चों को

a calzoncillo. Sad.

0: pensate, बाप दादा किस्सा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Prepara.

Sucks.

banana.

necesito

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर, ना कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना, ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाके कुछ एक मास खजाना जमा रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म तो नहीं होगा ना। खत्म होगा क्या? होगा, सदा साथ रहना। अच्छा तन मन तन दे दिया ना, दे दिया है। अच्छा दिल भी दे दिया, दिल बाप को दिए। अगर दिल दे दिया तो आपके पास दिल आपके लिए नहीं है, बाप जैसे

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: व्यक्ति भी है मटे मटे मटे में मिल जाती, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से चाहे सेवा

0: gonna maybe can burn but to can burn wala kon to kis ki din hoy ले अच्छा लगता है या दादा अच्छा लगता है तो लेपता के पीछे क्यों पड़ते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इस वर्ष की ये लास्ट मीटिंग है, लेकिन दूसरे

कार्य करने। एक तो अपने सेवा स्थान को सदा

ใจเฟียร์สังกัลป์